नमस्ते, मैं हूं गौरव फ्रॉम द बैंड कोमोरोसी और आप सुन रहे हैं प्रॉग कोर रेडियो, द ओनली ट्रू प्रॉग रॉक एंड इंडी स्टेशन इन मॉन्ट्रियल।